0: Oh, peace, New York. Link to God King, man. When I'm not in the studio writing my next High 16, I'm definitely listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: Dhoka dhadi chetavani. Apna kyuni login password ya MF. A. Kabhi saajha na kare. Kripya nimnalikhit baato ko yaad rakhe. Apne password ya MF. A. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें। कैंपस और क्यूनी आईटी आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा। यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी एमएफ ए अनुरोध का उत्तर न दें। संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें। यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या एमएफ ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें। यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है।
2: This is the professor, Dr. Ron Daniels, inviting you to join me for enlightening interviews and informative engagement with our audience on Vantage Point Mondays, 3 o'clock p.m. here on WBAI 99.5 FM in collaboration with YCRadio.org.
3: As a veteran of the United States military, I can finally get the opportunity to enjoy special events, things that we couldn't afford, thanks to VetTix. Every empty seat at a concert, a game, or a play is a missed opportunity to say thanks to a veteran and service member. We can give our veterans a special event where they too can create their own cherished memories. Visit VetTix.org. Find out how you can make a difference in a veteran's life.
4: Hey, what's up? It's your girl Kaya, baby, and you're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.

0: is YCRadio.org, the voice of today's generation. Focus the truth from the building. Make sure you follow me and cop that Triller Season Volume 1. Mr. B, where we at? Let's get it.
1: धोखाधड़ी चेतावनी. अपना क्यों नहीं लॉगिन पासवर्ड या MF. A. कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MF. A. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और क्यूनी आईटी आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MF A अनुरोध का उत्तर न दें. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MF A कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.
2: This is YC Radio, DJ Extra Small. Are you tired of going on the York College website to listen to YC Radio? Now you don't have to. Listen to YC Radio on TuneIn Radio. Download it off Google Play or the App Store right now. YC Radio, the voice of today's generation.
3: As a veteran of the United States military, I can finally get the opportunity to enjoy special events, things that we couldn't afford, thanks to Vestix. Every empty seat at a concert, a game, or a play is an honest opportunity to say thanks to a veteran and service member. We can give our veterans a special event where they too can create their own cherished memories. Visit Vestix.org to find out how you can make a difference in a veteran's life.
0: Well, what's good? This is Cypher Steele. Make sure you tune in to YCRadio.org.